जो है समा फिर कल हूं या ना हूं। बचपन से ही हमें एक चीज तो सिखाई गई है, जब भी एग्जाम होता था और हमारा दिल नहीं करता था वो एग्जाम करने का, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा वो एग्जाम जल्दी से पास कर लो, फिर तो मजे ही मजे। बोर्ड का एग्जाम दिया तब भी हमें यही किया बोला गया कि ये कर लो, फिर तो मजे ही मजे। उसके बाद आई ट्वेल्थ, फिर आई ग्रेजुएशन और डिग्री, और हमें इसी दौड़ में हम भागते रहे कि बस ये कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे। दोस्तों मजे

वाली कोई चीज वो होती है जब आप उस समय को, उस टाइम को जीते हैं, और वही एक एनआरआई की लाइफ है. हम लोग मज़े के लिए हम भागते रहते हैं, पर मज़ा वो है जो हम प्रेजेंटली, जिस समय को हम जी रहे हैं. याद कीजिए जब हम वीज़ा का फाइल कर रहे थे या फिर हम पीटी दे रहे थे, तब भी हमें ये कहा गया था कि एक बार वहाँ पहुँच जाओगे तो मज़े ही मज़े. लेकिन असली मज़ा किस में है? उस समय को जीने में है, उन चुनौतियों के साथ जीने में है, जिससे आपको एक नया स्किल मिलता है. मैं कहती हूँ कि एनआरआई होना एक आर्ट ही है, क्योंकि इंडिया में जब भी थे हम, तो हम यही फील करते थे कि वहाँ जाएंगे, वहाँ की अच्छी लाइफ होगी. लेकिन जब यहाँ आते हैं तो चीज़ें बदल जी जाती. चुनौतियों का सामना हम सभी को जीवन में करना पड़ता है, भले ही हम भारत में हो या हम न्यूजीलैंड में हो. हर चीज़ बड़ी ही डिफरेंट होती है. अब जैसे कल की ही बात लीजिए, मैं पामस्टर नॉर्थ की जो बारिशें हैं उसको एंजॉय कर रही थी, और सडनली मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अरे आज तो थर्सडे है और आज तो मुझे कूड़े का डब्बा बाहर रखना होता है. तो मैंने बिन उठाया और अपने दिन की शुरुआत करी. बिन उठा के दिन की शुरुआत इस तरीके से करी कि मैं उसे घसीटते हुए ले गई और बाहर रखा. पर आपको पता है कि मेरा अटायर कैसा था? मैंने नीचे पजामा डाल रखा था और ऊपर रेनकोट. ये है एनआरआई की जिंदगी, कि हर चीज़ को हमें खुद करना होता है. अभी कुछ टाइम पहले मेरे कोई नोन थे, उन्होंने बताया कि प्लम्बर जो है इतने पैसे मांग रहा है. तो उन्होंने प्लम्बर के लिए क्या किया, उन्होंने अपने जो एकेडमी है, जो फ्री एकेडमी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, यानी हमारा प्यारा यूट्यूब, उसमें से देखा कि जो नल है उसको चेंज कैसे करें, और उसे वो खुद ही चेंज करने लग गए. यही है खूबसूरती एनआरआई की, कि जब कोई चुनौती आती है तभी हम एक नया स्किल लेकर आगे बढ़ते हैं. तो जब भी अगर सोचें कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखिए कि जब भी कोई भी आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपको एक नया स्किल मिलेगा, और वही स्किल आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा. तभी तो खुशी खुशी बोल देते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने ये किया ही हुआ है. और वो कैसे? वो मज़े तभी आप लुटा सकते हैं जब आप अपनी चुनौतियों में अपना रास्ता खुद बनाए. This is a life of being NRI.

बातें कुछ अनकही सी होने लगी और बातें कुछ अनकही सी कुछ ऐसी भी होती हैं जब हम न्यूजीलैंड में होते हैं और इंडिया से हमारे दोस्तों के हमारे रिश्तेदारों की बातें जो हम सुनकर हैरान हो जाते हैं. बहुत अजीब अजीब सी बातें आपको सुनने मिलती हैं. एक तो बात वही कि यार मज़े हैं तेरे, न्यूजीलैंड में रह रहा है, साफ जगह पे रह रहा है और डॉलर कमा रहा है. बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है. लेकिन सेकंड चीज़ जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहा है. कहते हैं कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो तुम लोग तो सबके सब गोरे हो गए होगे. भाई इनको अब कौन समझाए कि यहाँ धूप इतनी तेज है कि गोरे होने की बजाय हम लोग तंदूरी चिकन बन जाते हैं. जी हाँ दोस्तों, यहाँ ओजोन लेयर जो है वो इतनी ज़्यादा कम है कि जिसकी वजह से जो धूप है हमें बहुत ज़्यादा तीखी लगती है. और मैं कहूँगी कि 15 या 20 मिनट में अगर आप धूप में रहें तो आपको वो स्कार्स, वो जो निशान होते हैं टैनिंग के, वो आपको नॉर्मली दिख जाते हैं. हाँ मैं मानती हूँ न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें सोचना पड़ता है बाहर निकलने से पहले, सनस्क्रीन लगानी पड़ती है. तो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए, मेरे उन सभी रिश्तेदारों के लिए जो मुझे कहते हैं कि न्यूजीलैंड जाके तो तू गोरी हो गई होगी, उसके लिए यही संदेश कि गोरी तो नहीं लेकिन हाँ चिकन तंदूरी वाली फील कभी कभी आती है जब हम शीशे में खुद को देखते हैं. और दूसरी बात ये कि बेटा कब सेटल हो गए, अब तो लाइफ में तुम्हारे मज़े ही होंगे. हम सेटल होना हो बट अगर आप रह रहे हैं यहाँ तो सबसे पहले जो आपको सेटल करना पड़ता है वो होती है यहाँ की घास. जी हाँ दोस्तों, जब हम एक घर में रहते हैं हमारे आसपास एक पूरा एक एरिया होता है जहाँ पे घास होती है और उस घास को 15 से 20 दिन में मोविंग करना पड़ता है, जिसके लिए या तो आप खुद करें या फिर आप बाहर पैसे दें. तो अपने सेटलमेंट का पता ही नहीं है क्योंकि हमें पहले घास जो है उसको सेटल करना पड़ता है. यही है खूबसूरती NRI बनने की कि आपको अपने छोटे छोटे काम जो है वो खुद करने पड़ते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे कामों में जो हुनर जो आपके हाथों में आता है वो काबिले तारीफ है. आपको सेल्फ मेड इंसान अगर बनाता है तो आपको NRI ज़रूर बनना चाहिए. इतना आप अपने घर से, अपनी भारत में रहकर वहाँ से नहीं सीखते जितना आप बाहर आके सीखते हैं. क्योंकि सही मायने में अभी तक मैं अपना अगर एक्सपीरियंस देखूँ तो यहाँ का कल्चर इतना डिफरेंट है और डिफरेंट कल्चर में सब जो है यूनाइट होकर साथ रहते हैं, यही खूबसूरती है. कोई रेसिज्म नहीं है, बहुत प्यार से सब एक दूसरे से मिलते हैं और सभी लोगों को पता है कि भारत

में लोग दिवाली बनाते हैं, भारत में लोग होली बनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ पामस्टन नॉर्थ से। तो हम पामी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर पे इस तरीके के इवेंट्स हमेशा होते रहते हैं, जिसमें हम अपने भारतीय होने के बावजूद भी और भी जो हमारे दोस्त हैं जो दूसरे कल्चर से हैं वो यहाँ आकर हमारे साथ हमारे त्योहारों को मनाते हैं। ये खूबसूरती है और यही प्यार है जो हम यहाँ आकर लेते हैं। तो कभी भी अगर ये सोचे कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखिएगा कि ये जो वाई मी है इसने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत यादें, खूबसूरत दोस्त आपको दिए हैं जो भारत में रहकर आपको शायद नहीं मिलते। तो चलिए दोस्तों, अब तो हुई हमारे रोने धोने की बात कि हमें यहाँ पे ग्रास काटनी पड़ती है, हमें यहाँ पे बर्तन मांजने पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, कोई भी आप मेड रखने के हिसाब से नहीं कर सकते काम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं। और उन्हीं सब चीज़ों की कश्माकश में आप जब घुसते हैं तो आप बोलते हैं वाई मी, मैं ही क्यों। तो अब वाई मी को ट्राई मी में बदलने का सुनहरा अवसर आ चुका है। आज हम अभी छोटी छोटी उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आप वाई मी को ट्राई मी में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जब बारिश में यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है और आप छाता लेकर जाते हैं, छाता लेकर आप गए, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं छाता लेकर गई तो सामने एकदम तेज हवा आई और छाता उल्टा हो गया। तब मैंने खुद से पूछा वाई मी, बट अचानक से मेरे दिल में आया ट्राई मी, यानी ठीक है छाता मेरा खुल गया है, अब मैं भीग कर तो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उन चुनौतियों को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती हूं और मैं ऐसे ही अपने काम पे जाऊंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वाई मी शिफ्टिंग टू ट्राई मी। और अब इसी के साथ दूसरा गाना जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और बहुत ही अच्छा गाना है। हर बार मैं कहती हूँ कि ये गाना जो है ये आपको उठकर एक साथ गाना चाहिए, क्योंकि ये गाना जो है ना मेरे दिल के करीब भी है और मोटिवेशनल भी है। चलिए सुनते हैं।

0: use a break.
1: If you want to listen to something a little bit different, try the Audio Archive with Matt and Eddie.
2: The Audio Archive on Manawatu People's Radio. Thursdays at 11 p.m.
0: You'll never catch me without a brick anymore, even at sea.
3: From the BBC.
4: I think we've got to find the beauty in the world around us.
3: The world famous music show.
5: I do listen to Lebanese music and Australian punk.
3: Featuring the hottest new music from the biggest names.
6: Making this record was one of the best things that happened last year, definitely.
3: And the legendary Top 40 Countdown.
7: People are always welcome. The more the better, for sure.
3: Top of the Pops from the BBC.
2: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
8: सुन मितवा तुझको क्या डर है अपनी ही धरती है और अपना ही अंबर है और हर परीक्षा को हर चुनौतियों को सिर्फ इस तरीके से जिए कि हम उसमें आगे बढ़ सकें अपने जीवन को अच्छा चला सकें तो वाई मी और ट्राई मी के इस संघर्ष के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों ये तो सच है कि एनआरआई की जो लाइफ है वो वाकई में इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है आप देखते हैं कि अरे वाह ये तो डॉल्फिन के साथ फोटो खिंचवा रहा है अरे वाह वहाँ पहाड़ कितने सुंदर हैं और सही मायने में देखा जाए तो अभी तो हालात ऐसे हैं कि भारत में स्पेशली दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आप सामने आसमान को देख नहीं सकते बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहीं जब आप न्यूजीलैंड में अपने दोस्त की फ़ोटो देखते हैं तो उसकी फ़ोटो से ज़्यादा आप जूम करके आसमान देखते हैं कि ओ माय गॉड आसमान कितना ज़्यादा साफ है और फिर आप अपने खुद के सपने बुनने लगते हैं कि चलो हम भी चलते हैं न्यूजीलैंड या हम भी चलते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहाँ जो है हमें ये सभी खुशियाँ मिल सके बट इसमें एक मज़ेदार बात क्या है इसमें मज़ेदार बात यह है कि हमारी जीवन जो है जितना ज़्यादा आपको ग्लैमरस लगता है उतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन चुनौतीपूर्ण के साथ मैं एक शब्द और मचाना चाहूँगी वो है सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है सोचिए कि आप जो इंसान इंडिया में खुद अपने हाथ में एक गिलास जो है वो पकड़ ना सकता हो वो यहाँ यूट्यूब से देखकर नई नई चीज़ें सीखता है और उसका एक्सपेरिमेंट करता है तो ये खूबसूरती है एनआरआईज की जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ मिलकर दोनों मियाँ बीवी एक साथ मिलकर अपने जीवन को अच्छा भी बनाते हैं और साथ मिलकर सभी काम करते हैं चाहे वो ग्रास कटिंग ही क्यों ना हो वेल अभी कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त का जब मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला ना कि तू तो डॉलर में कमा रहा है तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है और मुझे पता है कि ये चीज़ हम सभी के साथ होती होगी हमारे जो भारत में या और किसी जगह पे जो भी दोस्त है जब वो हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया में देखते होंगे तो वो ये कहते होंगे कि वाह यार तेरी ज़िंदगी तो बड़ी ज़बरदस्त है तू डॉलर में कमा रहा है लेकिन उनको क्या पता मेरे सभी भाई बहन जो यहाँ पर पामस्टर नॉर्थ में हैं और न्यूजीलैंड में हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो वाकई में दिल में ये सोचते होंगे कि उनको क्या पता कि भले ही हम डॉलर में कमा रहे हैं लेकिन जा भी तो डॉलर में रहा है भाई जो टमाटर इंडिया में आपको बहुत सस्ते आपको इंडिया में मिल सकते हैं वो यहाँ हम 200 रुपये किलो में ले रहे हैं तो जितने हम कमा रहे हैं वैसा ही खर्चा भी है क्योंकि हम इंडिया में आके तो टमाटर ले जा सकते नहीं हैं स्पेशली न्यूजीलैंड और इंडिया का अगर फासला देखा जाए तो वो बहुत ही लंबा है तो यही असली संघर्ष है यही हमारी असली कहानी है क्योंकि ये कहानी जो है ये हमें बताती है कि हमें जीवन को कैसे जीना है वैसे ट्राई मी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है दोस्तों दो चीज़ें हैं ट्राई मी में सबसे पहले जो आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस होते हैं आपकी चुनौतियां होती हैं उनको आप इनवाइट करते हैं उनको आप निमंत्रण देते हैं उसको आप कहते हैं कि आजा कोई परेशानी नहीं मैं तेरे सामने हूँ चल देखते हैं कौन जीतता है तू या मैं तो आप अपनी सभी चुनौतियों में अगर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसको आप एक कंपटीशन की तरह देखने लगेंगे और जब हम लोग कंपटीशन की तरह किसी चीज़ को देखने लगते हैं तो उसको जीतने के लिए हम पूरा जोर लगा देते हैं जब उसे पूरा जोर लगाते हैं तो डिफरेंट मेथड जो हैं हम उसमें वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें समझ आता है कि ये डिफरेंट मेथड ही जो है हमें इस कॉम्पिटिशन में जिता सकते

सकती है, और उससे ही आपका एक ऐसा क्लियर मेथड आपके हाथों में आता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चुनौतियों को जो है निमंत्रण देना शुरू कीजिए। चाहे न्यूजीलैंड में आपको कुछ भी करना पड़े, आप जीत सकते हैं। उसको पॉजिटिवली लीजिए। सकारात्मक ऊर्जा इंसान के अंदर अगर हो तो वो कुछ भी पा सकता है। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, उस चुनौतियों का सामना करते हैं, तो पता है आपको एक सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ क्या मिलती है? आपकी ताकत। मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी आप किसी से बात करो और कहो कि आप में क्या ऐसा खास है या आप अपने बारे में डिफाइन करो, तो इंसान वो चीज़ें बोलता है जो ज़मीनी तौर से आप उससे कनेक्ट हुए ही नहीं होते हो। जैसे अभी किसी से मेरी बात चल रही थी और मैंने उन्हें बोला कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, तो वो उसको परेशान होकर बोलने लगा कि अरे क्या ही है, मेरे में कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। नहीं, आप सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिस हर इंसान में कुछ ना कुछ खास है, हर इंसान में कुछ ना कुछ स्किल है, बस आपको ज़रूरत है उस स्किल को जानने की। तो जब आप चुनौतियों में होते हो तो आप उस कंपटीशन को जीतने के लिए, जब आप काम करते हो तब आप अपनी ताकत को पहचानते हो। हम वे लोग हैं जो अपना देश, अपनी भाषा और अपना कंफर्ट जोन छोड़कर यहाँ आए हैं। अगर हम इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं ना, तो जीवन में आने वाली छोटी मोटी मुश्किलें हमारा क्या ही बिगाड़ेंगी। हम अपनी रूट्स अपने देश से खत्म कर कर आए हैं। हम अपनी रूट्स के साथ साथ हमारे अपने, जिनके साथ हमने अपना बचपन जिया, अपने अपनी जवानी जी, उन सबको छोड़ कर आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्या ही अलग कर देगी। और यही अगर हम अपने आप से रोज़ सुबह उठकर बोलें, तो आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे यार जीवन में बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुश्किल है। नहीं, वो मुश्किल नहीं है। अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू कीजिए, अपने दृष्टिकोण को चेंज करना शुरू कीजिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी की मुसीबत नहीं आती, ज़िंदगी में कभी भी किसी की मुश्किलें नहीं आती, उसे अनुभव कहना शुरू कीजिए। क्योंकि वो अनुभव जो आपको जीवन में मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। आपके पास एक नया हुनर ही देकर जाएगा, चाहे वो प्लम्बिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, या फिर किसी और की संस्कृति में खुद को ढालने की बात हो। आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी डेवलप हो जाएगी। आपको खुद समझ आएगा कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी मत बोलिए कि आप मुसीबत में हो, क्योंकि आप ये समझें कि जो यूनिवर्स है उसमें आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुसीबत में हैं, और वो आपकी छोटी सी मुसीबत, छोटी सी मुश्किल बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए उस मुसीबत को, उस मुश्किलों को अनुभव कहना शुरू कीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर अपनी ज़िंदगी में काउंट कर ली, तो आपको खुद समझ आएगा कि आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। और अल्लाह के बंदे, ये ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा जीने की कोशिश तो कर।

अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी होगा वो फिर आएगा। चलिए अब इसी के साथ अंकिता की जादुई टिप जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमें पसंद है प्रो। हम कोई भी मोबाइल भी लेते हैं तो भी हम सैमसंग प्रो या अगर उसके साथ प्रो लगा हो, हालांकि वो अपग्रेड हो ना हो डैट डजेंट मैटर, बट स्टिल हमें लगता है कि प्रो है तो कुछ बढ़िया है। तो अब एक ऐसी जादुई टिप जिससे आप अपने जीवन को अच्छा चला सकते हैं और बन सकते हैं प्रो, वो क्या है दोस्तों? दोस्तों आप अपनी जीवन में हमेशा सपने देखते हैं। सपने तभी पूरे होते हैं जब मुश्किलों का आप सामना करने के लिए सक्षम होते हैं। तो जब भी कोई भी मुश्किलें आएं और जब भी आप कोई सपना देखें तो उसके प्रोज और कॉन्स पहले ही देख लीजिए और उसको समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और उन मुश्किलों के लिए क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि वो मुश्किलें मैं हटा सकूँ अपने जीवन से उस सपने को पाने के लिए। तो उस सपने को पूरा करने का अपने स्वयं अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। और याद रखिए, जब भी कुछ करने का सोच रहे हैं, मुश्किलें आएंगी, तो मुश्किल से डरना शुरू मत कीजिए। मुश्किल को इस तरीके से समझिए कि उसमें कुछ मजेदार ऐसा छुपा हुआ है जिससे मेरी जीवन बदलने वाली है, जिससे गर्व से मैं लोगों से कह सकता हूं कि सुनो मेरे पास ये स्किल भी है। तो मुश्किलों से डरना मत शुरू कीजिए, बल्कि मुश्किलों को डराना शुरू कीजिए। मुश्किल को कहिए कि देखिए हम यही हैं, देखते हैं क्या होता है, आप जीतते हैं या हम। जीवन में बहुत खटास आती है ना? तो जब भी जीवन में उस मुश्किलों की वजह से

खटास आए तो मेरी बात मानिए, अंकिता की जादुई टिप को हमेशा याद रखिएगा कि उस खटास को एक गिलास पानी में डालें और उसके बाद चीनी डालकर उसे शिकंजी की तरह पी जाए। जिंदगी थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन उससे आप भी बन जाएंगे प्रो। और आपको पता है ना, जो नॉर्मल सैमसंग फोन होता है और नॉर्मल और आपका प्रो फोन होता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और उसी की वजह से उसकी कीमत बढ़ती है और वही कीमत आपकी भी बढ़ेगी, आपका भी स्किल बढ़ेगा। तो याद रखें, ट्राई मी जो है एक ऐसा टूल है जिससे आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। अरे सिंपल सी बात सोचिए, हम इंडियंस हैं और इंडियंस के खून में ही होता है ट्राई मी। सोचो आपको बहुत भूख लग रही हो, आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा हो और आप परेशान हो, तो आपने वो समय भी जो है देखा है कि कुछ भी कैसा तैसा कुछ भी बनाकर आपने खा लिया क्योंकि उस वक्त भूख थी। भूख में इंसान कुछ भी करता है, तो वो भी तो चुनौती थी जो आपने पार कर ली। घर में घड़ी सोचो कड़ी बनती है ना, घर में कड़ी बनी और आपने दही डाली, दही आपको जल्दी पता चली कि दही तो खट्टी ही नहीं है, क्या करोगे, आप उसमें अमचूर डाल दोगे या आप उसमें नींबू डाल दोगे जिससे वो खट्टी हो जाए। मतलब कि प्रॉब्लम आई कि सब कुछ डाला आपने और फिर भी दही खट्टी नहीं बनी। आपने उस चुनौती को जो है सॉल्यूशन में बदला, उसमें नींबू डाल दिया और अमचूर डाल दिया। तो क्या किया आपने, आपके सामने जब प्रॉब्लम आई तो आपने वाई मी नहीं किया, आपने ट्राई मी किया। ट्राई मी तभी हुआ जब आपको भूख लगी थी, जब चाह थी कि आज तो घर में कड़ी बननी ही है और चाहे जैसे भी बने मैं टेस्टी कड़ी जरूर बना के रहूंगा। तो यही जीवन के साथ है। जीवन में फिर आप क्यों वाई मी करते हो, कम से कम एक बार ट्राई मी मेरे हिसाब से करके तो देखो और तब आपको पता चलेगा कि आपने जो जीवन में पाया वो और कोई नहीं पा सकेगा। लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, बस थोड़ा सा तो आगे बढ़। वाई मी को ट्राई मी कर कर तो देख, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, सुबह सुबह उठें और अपने जो बेड से आप उठते हैं उसके सामने आप एक पेपर लगा दें जिसमें एक जगह लिखा हो वाइट पेपर पर वाई मी और उसे काट कर आप लिखें ट्राई मी और हमेशा उसे चैंट करते रहें, हमेशा बोलते रहेंगे ट्राई मी ट्राई मी। आप देखेंगे ये जो चुनौतियां हैं ना, ये जो मुसीबतें हैं ना, वो दुम दबा के भाग जाएंगी। और जब चुनौतियां दुम दबा के भाग जाती हैं तो आपकी जीवन तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही हुआ। दोस्तों ये हमारे सिर्फ एक एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही और एक्सपीरियंसेस अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ आए, आप उसके बारे में सॉल्यूशन ले सके, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल वेल रोमिंग से जुड़ सकते हैं। आप वहाँ मेरे से बातें कर सकते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके के सॉल्यूशंस आपकी लाइफ में उसको बिल्कुल सॉर्ट कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अब आगे हम अगला गाना सुने, उससे पहले आप हर ट्यूसडे शाम 6 बजे सुनना ना भूलिए द इंडियन शो, एक ऐसा शो जो आपका अपना शो है, एक ऐसा शो जो आपको सॉल्यूशन भी देता है, एंटरटेनमेंट भी देता है, आपको आपकी बातें वो बताता है जो वाकई में आप बहुत सालों से अपने अंदर दफना कर बैठे हैं। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता शर्मा और आप सुन रहे हैं MPR पर आपका जबरदस्त शो जो आपको वाकई में बहुत प्यारा है। अगले गाने के साथ हम इस वाई मी और ट्राई मी के सफर के का निष्कर्ष करेंगे, उसका कॉन्क्लूजन निकालेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।

देर लगी लेकिन जीना सीख लिया, और यही जिंदगी की मेन घड़ी है। जिंदगी जो है ना आपको बहुत चीजें सिखाती है। तो चलिए समअप करते हैं अपनी बातों को, और विराम देने से पहले एक छोटी सी हिदायत। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, चले चाहे आगे बढ़े या पीछे मुड़े। जिंदगी दोस्तों वाकई में आसान नहीं होती, चाहे आप दिल्ली में हो या पामस्टर नॉर्थ में हो। फर्क बस इतना पड़ता है कि आप अपनी उस परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। क्या आप उसमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा लगाते हैं?

या फिर नकारात्मक। तो अगली बार जब न्यूजीलैंड की हवा आपके छाते को उल्टा दे तो परेशान मत होइएगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कीजिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा और कह दीजिएगा, हे हवा, ट्राई मी, क्योंकि आप एक एनआरआई नहीं बल्कि आपका एक नाम है, पता है क्या, नेवर रेस्टिंग इंडिविजुअल है, जो हर मुश्किल को पार करना बहुत अच्छे से जानता है। ऐसी ही और मज़ेदार बातें और चिट चैट करने के लिए हर ट्यूसडे, हर मंगलवार आप मिल सकते हैं 6 बजे मुझसे, और हम करेंगे कुछ ऐसी बातें जो चटपटी होंगी और मज़ेदार होंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून और सुनते रहिए MPR मानवतु पीपल्स रेडियो।